ताबिरे तखेलम्बम रंजिता चलुदगी मितै इसै मपुबु खुरुमजबा आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लान्थोक्चरी मतम इसै अहानबद ताबिरसी इलांगबम नेत्रजित सिंगी खोंजेलदा इलांगबम नोबिन चन्द्रना सैरेंगबा मतम इसैमा ली लीरगी वारी

0: 건질나 좀 따비리.
1: 이름덤 이래 짝이니 칸나 나하 아한 카이드나 마담마담기 톡나럭바 미요이케야 ngasi ekhuina thingneri
2: makal makal gi election lakpada anuba ariba candidate sing changyangi damak tholuktuna leibak sembada achuba saru gyana bo honari
1: micham ekhoi mayamna su makhoi bu kanano kari thabak tokhrabage aduga kari kari taurakani haibasidi khangningli
2: lakaduri ba manipur gi election da candidate ubiningli ba singi wakalon phongdok chanaba amadi miyamda masak takchanaba minit ahumdagi manga phawwa radio gi khuthangda sandoknaba matam thamjari
1: sponsor tauduna sandokchagadaba thauram sigidamak akashvani imphal ki commercial section da tanabiu
0: akashvani imphal hauzik ayuki pung taret makhai tari manipuri da pau tabirasi
3: आकाश बानी इम्फाल माइबम दिजमनी ने पाव पाजरी आहान बता मरोई बपाव गृहमंत्री गोविंद दास कौंथौजम बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन के उनेतुना राज्यसीद आईन कायने मितो कया संसिलप की मतांग खनखरे राज्यसभा की एमपी अधिकारी मिलम सरदाना अग्रतला खोसांग फाव सेलीब जन शताब्दी ट्रेन सर्विस जरीबाम फाव यौनब केन्द्र की रेलवे मंत्री तकसिंखरे इसिंग इसाउना अवाब नंगलब नेपाल दा भारत ना नोमुद पुंग तरानी पान की मई पीरगनी हायरी गृहमंत्री गोविंद दास कौंथौजम नंगरांग नई दिल्ली दा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन के उनेतुना राज्यसीद आईन कायने मितोप कया संसिलप मदि मसिना मणिपुर की डेमोग्राफी दा अकाइब पीरगली बस की मतांग दा यामना कुमन खनखरे उनबदुद सापम कुंज किशोर एमएलए सुसरु याखी सोशल मीडिया द थगलप वरोल मद श्री गोविंद दास नहाई वरी सानबदुद आइन काइन मितोप कया संसिलप दगी मणिपुर मियाम न थेंगनरी बेमि बायब कया सी मुन्न खंगब गलोनिना हिरमसिगी मतांग द जातगी थाकता सुनब मवोंग द वरोय सिनम पुरक न बहोनगनि हाइना श्री नितिन नबिल न थाजब बिरखी मणिपुर की डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी ngak bahibasi मणिपुर की मियाम की तुंगी पुनसी ngak bani मसुंग भारत पु हेन मपांगल कलन बहोन बनि हाइना श्री गोविंद दास न फोंगदोगली अमरोम द मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना सभापति ओइतुन ngarang इम्फाल द लेब महा की सेक्रेटरी ता तोंगान तोंगान ब राजनीति दुल सिंग की ओइब मिफम मपांग थोखरे मिफम मदुद एनआरसी अपडेट तोब याउना राइजसी की मियाम ग मरी लेने बो अफम किया की मतांग द खननी नखी राज्यसभा की एमपी अधिकारी मयूम सरदाना अगरतलाद खोसांग फाव सेलीब जन शताब्दी ट्रेन सर्विस असी जरीबम रेलवे स्टेशन फाव सांगदोपीनब केन्द्र की रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवद सेरोल मीतुन हाइजखरे महा की सेरोल दुद श्रीमती सरदाना है ट्रेन सर्विस असी लेतबना जरीबाम अकोयब लेरीब मियोय कयान सतोक ससिनद मतम सांगन खुदोंसादब कया मयोकनदुन लागली मियाम की अवाब सी यंगलग हाइरीब ट्रेन सर्विस असी जरीबाम रेलवे स्टेशन फाव योनबिनब आबिल तौखी सेक्युरिटी फोर्स न लेप लेतेन सथरप थी बुहुम की थबक तोंगान तोंगान बा लालोलुप सिंग मियोई मापन मदि खुजु खुलाई कया फागले अहुम सुबा असम राइफल्स मसुंग टेक्नोपोल पुलिस की कांगबु मना टेक्नोपोल जिला की बॉर्डर पिलर नंबर मरिफु तरेत मनाक तगी पीएलए की मियोई अनि फारे इम्फाल वेस्ट कमांडो टीम मना इम्फाल वेस्ट जिला की मोयदांग पोक तगी केसीपी पीडब्ल्यूजी की कादर नि हाइब मियोई मा हौखिब नुमाइजिंग नुमित फाखी थौबाल जिला की यारीपोक बाजार द थीबुहम की थबक सथबद थौबाल पुलिस अमसुंग कुछामथोई सुब असम राइफल्स की कांगबु मना यूएनएलएफ निंगोल मसा की कादर मसु हौखिब नुमाइजिंग नुमित फाखी नुमित असिद केसीपी अपुनब की कादर मा इम्फाल वेस्ट जिला की ताकियल खोंगबा लेरक असोबद की फाखी अमरोमद अकक्नब पाव फंगदगी कक्षिंग पुलिस कमांडो मसुंग निफुतरुक सुब असम राइफल्स की कांगबु मना कक्षिंग जिला की वांगु नोंयाई खोंग एरिया द थीबुम की थबु सथबद मियोई अमा खुजु खुलाई कया गलोनिन फारे मंगोंदगी इनसास राइफल अमा 303 राइफल अमा काप यारीब नोंमई मरु कया फागले मरग असिद थौबाल पुलिस कमांडो मसुंग लिलोंग पुलिस की अपुनब कांगबु मना लिलोंग उसोई पोबिदगी मियोई अनि द्रग कोनन फारे मखोयदगी एसपी कैप्सूल साम मणिपुरी थोयमदि हिरोइन ग्राम साम कुथ्राहुमदोय फागले इम्फाल ईस्ट जिला की मंत्री पुख्री मंदिर मनाकद थीबोम की थबु सथबद हैंगांग पुलिस की कांगबु मना मियोय अमा हिरोइन ग्राम कुनमापनग कोनन फाखी ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯦꯟ ꯈꯨꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯕꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦ ꯑꯦꯁꯤꯒ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯔꯦꯡꯕꯝ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯅ ꯊꯤꯒꯠꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯦ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯦ ꯑꯦꯁ ꯗꯤ ꯑꯣꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯈꯦꯇꯤꯕꯣꯔꯣꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯣꯂꯦꯟꯈꯨꯜ, ꯀꯩꯃꯥꯏ, ꯊꯤꯡꯇꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯜꯕꯨꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ 90ꯁꯨꯕ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯕ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯕꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ, ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟ ꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯕꯁꯀꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯔꯨꯝ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯎꯠꯄ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯕꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯅꯦ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯃꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯙꯔꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯍꯜꯂꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯡ 18ꯒꯤ ꯃꯩ ꯄꯤꯔꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 93 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯡ 18 ꯃꯩ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯨꯖꯥꯔꯐꯨꯔꯄꯨꯔ ꯗꯜꯀꯦꯕꯔ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯃꯩ ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ 100 ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯟꯀꯄꯨꯔ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯒꯔ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯃꯩ ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ 54 ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ, ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯋꯔ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯩ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯃꯈꯩ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯩ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ 18 ꯁꯨꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯠꯊꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯩ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 13 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ 50% ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ GDP 40% ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯚ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯄꯨꯇꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯁꯤ ꯖꯤꯟꯄꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯩ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯃꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ꯫
4: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ꯫ NRC ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒ CSO ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ NRC ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ BJP 2022 ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯍꯨꯏꯌꯦꯜ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯗ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯗꯥꯁꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ MLA ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯗ CBC ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯒꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯦꯜꯗ Hills Hornbill Express da raja sida purup singe marakta yasinaba puroknaba amadi free movement lehenaba honariba party di BJP khaktani haina mukhyamantri Yunam Khemsa na phungtoke wapham marui pawina phungli dijamani
3: thagasori amukhomba aroiba da maroiba pawmu Gray Matri Gobindas Kontozamna, BJP National President Nitin Nabinga Unaduna, Rajya Sabha Ayin Kaini Mitopkaya Sangsilapagi Matang the Kanekre. Rajya Sabhagi MP Adhikari Mayum Sardana, Agartalada Kongsang Pabasiliba Zan Satapti Train Service, Zeribam Pabu Yahunaba Kendrigi Railways Matri the Taksin Kre. Amasung Ising Isauna Oabanang Halaba, Nepalda, Baranan Nomuda Pung Tarani Pangi May Pirigani Hairi, Paul Isare.

ताबिरे अराम्बम अपावी देवी ने सकपनोर राधा अनुराग आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदोक्चरी तोनाम्बम संदीप नखोंबा वायलिन।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक दिल्लीदगि रिलेदा समाचार प्रभार मोर्निंग न्यूज अमदि सिलोंदगि रिलेदा अवांग नोंपोक लमदमगि पाव मथं मथं ताबिरसी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
3: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
4: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
7: Given a choice, a judicial officer,
8: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को

0: गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य

0: 哎，打了吧，打了 bro。
1: 오타리 타리 예 나시디 티엔이다
0: 아토 빠이게 타바 아마 님 수살로 라바는
1: 아스 까나나부 뽕디니 파마 카이타레 눙당시다 까나무나 루이노
0: 오헤 클라카 카운텐 가도 ngalingi de mayum de leita baduna ni ko
2: ima
1: haune
2: 그인 장 통해
1: 이름 통해 이름 범수 야리다 자시디
2: ima 아이가 때 히키게
0: 떠오르지
2: 와레바 아이가
0: 떠오르지 응네
1: 호호 마기 튜션세 키드 헤만 크레 아육다 아니 스쿨 수티 헥 타바가 욤데 락트리 튜션 마팜다무 마사나 라릭 빠자바기 마탐가 마트 팡드레 해바
0: 하이 카라 탈링에스 데 낭나무 독동에 카라 카라 파바 호나바 칸바싱지 노모데 마팜 마리 망아가 짤림니 미디 코
1: 오 아이디네 마시기 쳇나비 세카야 야닝데 카나나부 앙앙싱시 라리 헤이더우리게 테나와 마론 톡포구만
0: 아이 남볼기 이마나바두디코 마사노 피자 아융가 타나싱 메롱도 포레 코 मदुलोर गारी मनुंग द खरा सा था गने ट्यूशन म फम म क्वा गतिन द मुख था मुरिम अदे मयुम ल चल ग साक लो रे को मसानो पिगी फिजोल गा खाव ग द लो बिरो रे लरकी मदे मु मसी ग मयुम ल संग गने साब थप ग तोर ग स्कूल ल मु थिलिम मसानो पिदु ने स्कूल ल लरिंग द माई थाब गंग दो मान सेंजर रे को अदे मु स्कूल सुति थार ग नुंग थिल नुंग दांग ट्यूशन म फम अनि लोर ग ने मान मयुम ल चंग जे कंग बा
1: वो अदु द ने मणिपुर से मादौन होना मखो अमादने परीखादू मकोगदी अयामना ट्यूशन मफम अहूम मरी मंगा लोन तमनबनी मको मथु ताद्रे अदना होने होनरुरगने सेकें डिविजन थर्ड डिविजन
0: लापसुरीबूदी फेलो
1: अग तमुबी कानदे
0: मैं पुनम तमनरमनी तमदू यादने नंब
1: ए कना नुने याद्रीसीबो
0: इहे नंग सिसु मरेदी मी मयाम तमनरग तमदब आंगांग दो अदे तमन बंगम दब मा मा पा दो वखल नुंगाय जद ब हंथ ज वखल म पुक नै हेबा
1: वदुदी मी मी गी वानीदा आइन ने थामजिन खिबने पाउसे दो हुजिक सुलेरम खिनि मोयबा गो मेन स्कूल गी आंगांग मा ट्यूशन सु सुंग चा चते हाय मेट्रिक हाइदोरकपदा मणिपुर की सेकेंड पोजीशन लौखिबदो जिक्सुलै
0: यार यार को नंग ये नदन काना पोंते साक्षारसि से हाय वांगथोयबा वांगथोयबो
1: ngakdang tumja khisano sidani ne tuition chalu bagi karibu kana doinu ma toise
0: adu ni aina hairip se tuition chalu re tuition o jana tak podu kari kari no karim te hi giing de haiwani
1: o aina haijari na ne tuition je chatra su school gi wazana taklak padu नुमिदांग पुंग तरुक तगी मापन फौ येंगदि अंदुम हैगद्रसिनी
0: मदो मी मी दले को

0: 哎，一峰啊，王腿，哎，王腿，好个老奶奶，我峰没里打到人嘿，哎，打不着。哎，兄弟 ，TV， 人家那 mobile game， 啥那子那来，好个老外不呢，能不？哎，妈妈，能不拿啥东西互动呢？
1: 会。
2: 一峰啊，一峰哦，能不打了不来吧？爸爸那天你还谁赢我？谁好个老吧？峰们啊，到底什么朋友动那多？谁好个老没能不？
3: 妈，哎，我是说了，不要不写吧。
2: 哎，肯定过。那爸个呢？伢那样那爸还呢？好个老还呢？
1: 没吧？俺俺什么过要不写还的耶？
0: 哎，该弄过去拜的。哎，过去拜呀罗。呀，那日爸不是过的拜 game， 啥那不得不？哎，好个了，哎，罗小罗，罗小罗还没还？
2: 没那么些的。该弄用俺打死的把熊个嘎巴的呢。
0: 哎，普里什么那么那么严重？
2: 那啷个来了？把普里还没得不？咖喱么那么呢？
0: 顶可能比食的那把黑大阿妈杀人尼过，阿多那尼。
2: handak maraksi mawonga mai tau taurai ye tiusan se masa de gi mapan he na thawai yawrai phi ronga sina khong khong adan
0: nang chote hinjalei ei angang tani nang do angang tani ko
2: hima
0: ke banan ba phi anu nu bu set pa je pun chiro ni miwi bagi ko haksang phana bagi masa amni mase
2: hoi hoi adu budi sum me khanja ro ne madu na tabida atop aning ba amagi ke ruraga na luraga ne ning ba thungau drabadi hayeng ning ba kaira dine madu ne hen hachang sokni ngai woini ko
0: e yam khangi ne ha pai pai pai chalo na sa na pa do hogol jalam ti yong cha
2: wo na sa yau draba su phi set pa dil woire da na manam sunung sire mapham du di yok silu ro wo jara kana da no angang ma sanga mo dre ha bi ru ro
3: baba baba angan ba gi tu sen do tu asi ama mes ki du di sa se ba
0: e kai no ha ji bo hai na tin hai मेस तु तो जो अंगन बदुनी ने नंग चतुक दिया
3: सुखोय बबाजी दी
2: ए आ छयाम लेको
0: आइ नंग सु नसा जे के मिश्र घर सोली खंग नत्र ना हां मेस से हाना नंबर याम याम फंगी दु दिए
2: वो दुर सु इसा से मसांगम दे हाले पोंग दि मंगा ता सले ए मसिन मया सोम त छेंग दि काइम त सु सा दि संगोम सु थक दिए बा
0: नंग नसा के माना दनाई को गाव रे को ए को गाव रे हे
2: मोय बा पंग हाय हाय न बनी हाय बबु ने ति सन्याम तो बसे आइ दिया निंग दे को
0: adu di bim sanana hai bir si extra tuition pam de sini ne
2: madu maksu ai hai de da moi ba
0: nang bu jathare ba moong si manipur gi da na ta na ma palang gi mahiro sing sang dam na ba no ta na ba tauri ni ko no su no ta ni medical entrance ta manipur ma sa ayam ba mai pa im IAS IPS MCS nang na sauri ba tuition ma pham au mari sian ba mahiro sing do madu na ayam ba ni ko
2: o madu di ne kum ma ma da mahiro tara kun khan bai wa ni madu gi chang yeng du da yauri ba mahiro di लिसिंग लिसिंग ने लेम होरी ब मयाम दुदि कम दोबा
0: ओ लेम होबो मयाम दुना ने अमु अते अते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन याउ तारे
2: इसम मेक सम न हायरबदा अंगांग सिंचि द सेल याम संखरे मतम मांगै हपचांग छोकङै होन रु रगने तौरुरिबा असादो थुंग दना तोपा अंगांग सु मसिंग याम लबने अंगांग सिंचि सु मसागी वाखल खर खलन जाबा खर सानाहन खर साजेन तहनबा खुनाई सिगी सत्न लोनचत इमुंग मनुंगी लोनचसु खरदिप खंगन बफाय हायबा अदुदि नते हौजिकांग यांगांग सिनसिना नोमदा टिउसन अहुम मरी स्कूल लमुकसत नहाक्त संगनरे मसा फत्रे मम्मी सु अमत यादरे अदुदगे मु लंगफैद लाइरिक तंब मुख थाबीरे अदुसु आंगांग खरदि अफा पुल लैत्रबनी हायदना मिरम दुद इंगाव ngौसिनबसु याउरिबनी कना कना गुम्बा लारिक लाइसु थवाय यावजब कया मदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कया दो माय पाकपसो नुम यावे अदुबु करी गुम्बा युम दला आकांदा मामा मपा नुसिबा मसि मनाउ नुसिबा वातुना खुनायगी लोनचत खंगदब यावरपदगी फरक तारक पा मयाम यावरिसिदि
0: हाय हाय हाय हाय हाय को से आइ हगे मुनाता मामा मपा मसि मनाउ नुसिबा खंगदबाय दुदिबो को आंगा ngौसिन नना होखिबा लाइक लासु तंखिदब मसासिंग दो मदुसु तौरिम मदुदि मि यामबनि ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯅꯦꯝꯅꯤ ꯅꯪꯕꯣ
2: ꯋꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯨꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯗꯤꯌꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯨꯞꯁꯦꯟ ꯁꯦꯟꯅꯖꯔꯛꯄ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ
0: ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯈꯟꯒꯗꯝꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤꯕꯀꯣ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ
2: ꯑꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯒꯅꯦ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯇꯕꯗꯅꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥꯎꯅꯗꯦ.
0: ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯍꯛ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ. ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ.
2: ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟꯗꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ. ꯌꯦꯡꯉꯣ, ꯏꯟꯗꯣꯝꯆꯥ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯃꯧꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯏ ꯍꯦꯛ ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ
0: ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ, ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯥꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯇꯥꯈꯤꯗꯕꯗꯨꯕꯣ?
2: ꯑꯣ, ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯃꯧꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯄꯦꯜꯂꯝꯗ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ. ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ, ꯍꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯤ.
0: ꯇꯧꯕꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯕꯅꯤ, ꯋꯥꯔꯧꯒꯟꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ, ꯂꯧ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯤꯅꯤ, ꯏꯪꯈꯣꯜꯁꯨ ꯆꯥꯎꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯖꯔꯒꯦ, ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯐꯪꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯕꯣ?
2: ꯁꯣꯔꯣꯗ, ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯉꯛꯑꯔꯣꯏ.
0: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ, ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯒꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ?
2: ꯑꯣ, ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯍꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯣ. ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ, ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯃꯅꯦ ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟꯅ ꯃꯔꯛ ꯍꯦꯛ ꯊꯠꯈꯔꯦ.
0: ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯅꯣ?
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁ, ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯇꯥꯕꯗ.
0: ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏꯕ?
2: ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯕ, ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯀꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕ, ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯁꯔꯤ, ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯦꯟ, ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯌꯦꯞ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯕ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦꯅꯦ, ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ.
2: ꯑꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕ, ꯚꯦꯟꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯇꯤꯡꯕꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯁꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯇꯝꯕ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯕꯦꯡꯛꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁꯦꯜꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯈꯣꯠꯄꯤꯔꯕ, ꯆꯍꯤ 16 17ꯇꯒꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯌꯥꯝꯅꯤꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯕꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯅꯦ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕ, ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯃ ꯇꯧꯖꯕꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕ.
0: ꯐꯅꯤ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯝꯗꯧ?
2: ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ, ꯕꯦ ꯇꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ, ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ.
0: ꯑꯥꯏꯕꯤꯑꯦꯝꯁꯤꯅ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒꯅꯦ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦ ꯐꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯅꯦ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯗ.
0: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯊꯤꯌꯣꯔꯤꯗꯨ ꯐꯖꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯦ.
2: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦ. ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯅꯤꯜ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯝꯍꯟꯗꯕꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯗꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ.
0: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦ. ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ, ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯀꯣ.
2: ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ?
0: ꯑꯗꯨ ꯏꯕꯦꯝ ꯁꯅꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏꯃꯤꯌꯥ? ꯏꯍꯦ, ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯡꯁꯤ ꯑꯥ ꯌꯧꯔꯝꯃꯦꯅꯦ. ꯍꯥꯏ, ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯦ.
2: ꯍꯩꯃꯥ, ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ, ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯇꯧꯁꯤꯕꯣ?

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝ ꯒꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯕꯣ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣ ꯁꯤꯡ, ꯑꯕꯣ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯃ, ꯑꯕꯣ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯣꯟꯕ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯗꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯖꯦꯁꯃꯤꯟ, ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯆꯦꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃꯥꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना

0: बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अदमने थोरम ताबिरिबासी आकाशवाणी इम्फालगी FM संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफम सिदा पुजरकली तोंगान तोंगानबा मणिपुरी फिल्म इसैसिंग मथंग मथंग ओइना खुदोगी अहानब ओइना तामिनासी थारू थंबाल फिल्म असिदगी सुरेन अमदी चित्रागी अपुनबा खोंजलदा खाइदेम इमोन सेरेंगबा अमदी सोरी सेंजमना सेरांगबा फिल्म इसै तामिनासी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी, मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओ, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं। वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
5: हेलो मैम।
3: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन मैम।
5: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
3: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
4: यस मैम।
3: ऑलराइट, you all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
6: pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
10: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
11: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
12: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
13: Will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
4: He was black.
3: As you know.
4: As you know.
3: how to be beautiful.
4: How to be beautiful.
3: He wanted to know.
4: He wanted to know.
3: Colorful feathers.
4: Colorful feathers.
3: He wanted to grow.
4: He wanted to grow.
3: He found one peacock feather.
4: He found one peacock feather.
3: He stuck it.
4: He stuck it.
3: In his tail.
4: In his tail.
3: Then he found another.
4: When he found another.
3: He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows
4: laughed at him.
6: Oh, what a fool you are.
4: Oh, what a fool you are.
6: You are beautiful in black.
4: You are beautiful in black.
6: We love you.
4: We love you.
6: For what you are.
4: For what you are.
3: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
4: Okay.

0: Now children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh yes, now let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Right.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
5: Yes, it is green.
2: Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vahanya, Soham.
3: Me.
0: Me. Lavish.
6: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
7: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
8: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोग

0: के साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी, हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है।
0: ओ।
1: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा।
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
2: यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं, इस विषय
2: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
4: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदामणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
5: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
6: गुड मॉर्निंग दीदी।
3: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
7: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
3: फिर तुमने क्या कहा?
7: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
3: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
7: हाँ दीदी।
3: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
8: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
7: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
3: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी है, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
7: अच्छा दीदी।
3: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
7: दीदी ये लीजिए आसन।
3: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा? क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
9: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
3: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
9: हाँ सो तो है।
3: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
9: तबीयत तो ठीक है।
3: अच्छा मीम दीदी, अब मैं चलूँगी,
9: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
3: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
4: निवेदिता के सौम्य, सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुई।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: तबीरे एनसीईआरटी की तेंबांग लोइन संदुक चबथौरम उमंग।

ओइनाम इबो याइमाना लीबा महाभारत की वारीदा ताबीरे महाभारत आदि पर्व की मनुंगदा लक्ष्मी नारायण की मचा हई हयागी वारी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मथंग की थौरम वेस्टर्न म्यूजिक फंगबीरगनी।

0: ꯀꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯇꯤꯟ ꯀꯊꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯊꯥ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯖ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯉꯛ ꯁꯨꯖꯤꯟꯗꯨꯅꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯂꯛꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯜ ꯃꯆꯨꯅ ꯆꯨꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯟꯗ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯖꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯌꯥꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯠꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯧꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛꯅꯗꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟꯅꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯃꯍꯥꯠꯃ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯩꯇꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯑꯃꯅ ꯐꯔꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯟꯗꯨꯞ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
3: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा। आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम हैं।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
1: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
8: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। विदेश के

0: एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके।
1: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए से
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम आरंभ होता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम महफिल में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी कव्वाली। तो सुना जाए ये पहली कव्वाली हम किसी से कम नहीं फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

अगली कव्वाली साहिल लुधियानवी द्वारा लिखी गई है और राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्री और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

सुना जाए अगली कव्वाली फिल्म धर्मा से। वर्मा मली की शब्द रचना है और सोनी ओमी का संगीत, और आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुना जाए अगली कव्वाली फिल्म कर्मयोगी से। वर्मा मलिक की शब्द रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

कार से टकराते हो ये मर्दों वाला काम नहीं। क्या इसका नतीजा निकलेगा सोचा तुमने अंजाम नहीं। सीने में अगर कुछ हिम्मत है तो हमसे आंख मिलाओ तुम हंसी को मिटाकर।

दोस्तों, कार्यक्रम में सुना जाए ये आखिरी कव्वाली फिल्म दुश्मन से किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ꯫
1: ꯍꯣꯏ, ꯇꯥꯖꯔꯤꯕꯨꯡꯉꯣ꯫
0: ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯧꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯌꯨꯌꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯤꯅ ꯆꯥꯕꯨꯡꯕꯝ ꯖꯥꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅꯤ꯫
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯟꯖꯝ ꯁꯦꯠꯇꯦꯖꯤꯅꯤ꯫
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯇꯥꯁꯤ꯫
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯌꯨꯌꯣꯟꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯆꯕꯨꯡꯕꯝ ꯖꯥꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯂꯥꯡꯒꯣꯟꯖꯝ ꯁꯤꯠꯇ꯭ꯌꯥꯖꯤ꯫
3: ꯚꯥꯏ, ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯅꯤ, ꯅꯠꯇꯦ? ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤ ꯊꯛꯀꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯥꯗꯦ
4: ꯁꯨꯃꯤꯠꯇꯣ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯋꯥꯒꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ
3: ꯈꯪꯉꯦ
4: ꯑꯩ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ
3: ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯍꯥ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣ ꯇꯥꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯦꯜ ꯈꯤꯇ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯅꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ
4: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯚꯥꯏ ꯀꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏ
3: ꯃꯥꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯏ ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯉꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕꯐꯥꯎ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯗꯅꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯅꯣꯡꯇ ꯈꯟꯗꯦ ꯊꯕꯛꯁꯨ
4: ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕ
3: ꯄꯤꯔꯤꯃꯤ
4: ꯍꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤꯅꯦ
3: ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ
4: ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯊꯪ ꯀꯥꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯣ
3: ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯇꯥꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯪꯒꯤ ꯚꯣꯠꯇ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯇꯤꯡꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯈꯔꯗꯤꯅꯦ ꯈꯪꯕ ꯐꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯀꯨꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ
4: ꯑꯁ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯣ ꯐꯖꯩ ꯀꯩ ꯈꯨꯠꯇꯨꯝꯇ ꯁꯣꯛꯈꯤ
3: ꯈꯨꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ
4: ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯃꯥꯏ
3: ꯑꯁ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯍꯧꯏ ꯋꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯨꯕꯛꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ
4: ꯅꯠꯇꯦ ꯚꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯗꯨꯕ ꯅꯤꯡꯖꯥꯔ
3: ꯇꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯅꯤꯌꯦ ꯇꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯌꯥꯎ
4: ꯀꯥꯟꯗꯤꯁꯤ ꯇꯥ ꯁꯥꯡꯕꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯃꯨꯁꯤꯗꯅ
3: ꯆꯪꯉꯨꯝꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯗꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯣꯏ
4: ꯑꯦ ꯏꯇꯣ ꯃꯦꯟꯅꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯧꯅꯨꯗ
3: ꯃꯦꯅꯦꯛ
4: ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ
3: ꯃꯦꯅꯔꯒꯤ ꯋꯥꯅꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯝ ꯀꯟꯕꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ
4: ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯂꯣ ꯆꯪꯉꯁꯤꯂꯣ ꯆꯪꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯧꯒꯦꯁꯦ
3: ꯀꯧ
4: ꯑꯣ ꯇꯁꯥꯝ ꯑꯣ ꯇꯁꯥꯝ
5: ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯪꯉꯛꯑꯣ
4: ꯇꯁꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯅꯅꯥꯎ ꯇꯣꯝꯕꯅꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯆꯥꯎꯊꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ
3: ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ
5: ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯨꯔꯦꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯥꯅ ꯎꯏꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥ
4: ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪꯒꯀꯣ ꯆꯥꯅꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯈꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯔꯣ
5: ꯆꯝꯊꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯦ
4: ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ
3: ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯥꯏꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥ ꯀꯩꯅꯣ
4: ꯕꯥꯏꯅꯪ
3: ꯄꯦꯛ ꯑꯃꯗꯪ ꯄꯥꯏꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏꯝ ꯀꯧꯔꯤꯗꯨ
4: ꯑꯁ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯇꯣ
3: ꯌꯥꯅꯤ
5: ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯁꯦ ꯑꯋꯥ ꯄꯥꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯀꯣ
3: ꯑꯣ
5: ꯁꯣꯝꯗ
3: ꯑꯣ
4: ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯊꯥꯡꯒꯜꯂꯣ
3: ꯊꯥꯡꯒꯜꯂꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤꯗꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯆꯥꯛꯇꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯁ
4: 아이씨 큰일 누르는 게도 있다.
3: 큰데 봉함도 보님.
4: 많이 좀 어떤 라이크님에. 뭣 구이드럽니까?
3: 안타기 마가네. 숭불 불러로 해. 마부 인투방 함가다 봐 미다 장난이. 세 라이즈즈.
4: 신을 왜 짓고 있다?
3: 개인우니 특히 동네 개노. 나 사인 아이나 바실로금 제 하이간다 야데 탁보하고 그러디 에이디네 야데 벤 탁가다 맹아시지
4: 에이씨 에이 따삼 고르겠고 돌로실라세 오 따삼 오 따삼
6: 오 라이 라이 라이
4: 오 에이 따사 아이 코이 시켰다 야무는 밥이로
3: 호호호 어 따삼 히작도 땅카이무던 거 비롯고 따삼
4: 아이씨
5: 땅카이무가
4: 바이시디 헨질러디 야루이디도
3: 그리기 헨진부로 탁히 동네 나시디네 빼나 탁카도 바네 따오 탁카도 바
5: 그리노 이나옥적 투이징 나시디 마트와이시 이놈놈아 있던 위다 그래도 부야오르게 이나오고
3: 주메 따삼 주메 아이 나시디 암놈아이티 얌두와로위
5: 아두부와이바 कना बुनु इनो नु नु आइ त्रिसु
3: आते कना सुनते आ कोई की काउंसलर कुमार है दो
5: हां
3: कुमार है दो आ दो दो
5: ए करी की नो मादी के दो न बयाउ के
4: आ के नो नि दत्ता छ आइ कोई तौ से माग भोत मसाम एक लेप दो न तुम बच्चा ब खंग द मु खै ओ टॉक न वान चेंजे गि बने अदुगा हुजिक न कैनो कैनो याम हाइरे ए
5: हुईने इनाउ चौ थुइदी कुमार की दम यम कन चीन न चोंग न हुन ज खिनि
3: तो तो तो आदुने नति आइ बु हान यु सुमाइ न थम ब्राबा हा मागी बोत नो ngam ब्रे जि नुमिता भव थक पद हान न पे अनि औम दंग थक पद ngau जरम ब एसे नसि दि शे फा दि म गे ngau या द्रे द मा मुन खल बदिने आया मान आइबो याम न लुन तोफम तोफने
5: चुम चुम
3: याम तोय न हाय बिजुने ते नोंग फादो लंबी दगा थेंग न बदा ता कुमार सेल किते पिरम वा हायबो मान तोपो मा खुम ग हेत सकी नसी सुनी नसी सु मेम द जंग ग आइना सुम न गि लुपा संग ग त पियो न हाय बबु मान ngam न अदुम पिरक त वे वानला तो विमन खंदबा मिसे खंदबा
5: निया बसिन जुने ती माजु फटमन देतना दुते
3: नसी वासी खक नती देता सा वा मयाम मले ये बा आइने ने तंबगी लोयबा खंबा सुमना नर अदु बुदी वोट कुछ लगते देना खंगने मा
5: ए याम हेने सु खलुरुनु इनाउ जिदी माग माने दु सरक बुदीने इरीम लेम ने हेले थो हा नत्र तुंबा
4: सुमे
3: ए सुमे तो गाय दी सुमनो गाय दी सुमनो बा माग पुलम बा माग मी ओर म मयाम म माग मोंग या निंग ने बदेगी ने थोलक बा कोक थोंग अम ले रे उ जे आइन ने लोइन खंग मान ममांग द बोर काग रि दु जो आइन ने यू पिथक पिथक तना खोम बगि ने समना द लित्रा काहौ बे वानी
5: हां नंग यु पिथई बा
3: मां बुलम तो मा लोय कावरे ता सा मा लोय कावरे फत्तप मीने
4: इश पोके दुरगी तो नंबो तो बा
3: गेर कईगी तो बा तो तुम तो तोय मा याम फत्तबा असे अगोई ता सामने यु करगा योंजई से असे अंगांग मंगले फत्तब तबक तोरे ना मसे थिंगवाय दर मैरा पाइबी इनसिलिने
5: असिंग बरेने
3: का फतरी रे हो बा
5: ए मा मकना
3: मा असे नहान मसे द मैरा पाइबी लामी दो मैं मया मम लाम बदो तसाम मान इंजिन बरेने मी ए आईडिया हैपी बने ए संगनु संग सु कैसो काना रो ए ना ए हैपी बने
4: मानि तसाम ए कोई वाइन है से लोइन सुमन
3: चुमबने
4: अदु तसाम ए कोई जी कया तार
5: आ चा न बगा cham kuntra cham kuntra tare ya cham ke khana mo di
4: ya ya ya edi ta no ni yo yo
3: ke e ta ai di ne a sue bom te yau di ma pum ju
4: ma pum ju a sue bom te yau ba ai ai ai ai to a she she she da le re ta san
3: be mo ho
4: di sa si lo ba ऐसे शंदर जी पता नाम तो दूंगी लोग के लोगे ना
5: तू नहीं को
4: ऐने मैं साने सी ठोक नहीं सी ऐसे मने को आई थे
3: कहनो सी ठोक पाए थी कहनो हाँ सी ठोक नहीं आई थी ठोक पाए थी कहनो अस सी शंदर जी ने कहनो ऐने से तेरे माँ से ऐसे है बुने माँ इंतुबा माँ बोट कहन दबा सिया बोट कहन बा बोट कहन दबगी शो ऐने पाए aduga ma gumba counselor pitru mana sautho engonda singna boga sai no du nongini ne ma oi bo bolai dai ni ne
4: mali
3: ai ni ne
4: right ito bod bod ai do ito ne
3: mali
4: a tasha ai khoi mu user ge
5: hoi phare phare hai hai tumba amase
4: mai
5: yong na patilam ko
4: hoi ta sam ai dum phan bu khone
3: board hai do ha board hai do ngasi mak winning re da ko mi masak khang da ba sau khat da boy
4: law ni mi tau kai do re chin dai kai mi jin ai koi loying re
3: law
4: mi na ur ga ai koi ni si yu mo ma la ni ro
3: man ma su ni da ai di law ni ni ai di magi bot pon bagi so aina pai
4: yes right
3: nuaini ma nuaini ma
5: sok thoe bangang se yu pam ja bagi wa khakta ni mi di khon bangang ni mas ma nangang bo wa da aina yaning ba maya ma ma yau ni adu ga counselor kumana ai yu yon ba sikala ine ai gi hingna bagi lambi ma cha ma ka chum thi je ba ji bo मान मियाम दा अरान ब फत्त ब लंबी वन ग ओला दा फै फै अंग मंग मयिंग न ता रे दा ऐ सु ऐ उपाय थी ता शेरा

0: lu mong la tai bang la ba tau di si bo ho moi ta mo moi ta mo ka dom da muk tho kra ba za no ne ho moi ta mo
1: o ka do ro ge
2: kai no du phin na ko dai du bo
0: ai na ta rak li ba pao si bu sum la bra ba
2: ka di pao no nang na ta rai bo
0: ho nang ha da counselor bo lep ka ni ha ri se
2: nang dia ka dai dai ta rai ba
0: नते नंबो हाइरी बसिबु चुमलब्राबा
2: आ चौधुई न कना कना दनो हाय न हाय बनी अदुदा हाय युई दिनी
0: कया द लाइन खमिनो येंगोने नते अदुबु पंग हाय हाय बयाबा वाराबा
2: नो
0: बुओ तो लेपनी गगा मोय ओइन लेप यादा ब्राबा नंबो अमुक पक्षली दो करीगिनो हायबा बुओ लेपकाइना यारु को तामो तंगनु को
2: करीगि यारु दोइनो आइदि खलिमनी मतांग छु चप चप हन किज
0: काइनो हाइसिबो अस
2: हाय हाय मीतानी ला मुंग द ला
0: काइगी नो बनांग इमुंग द चंग जाय सिद दुम वारी छान र सु या बसिद
2: आइनी युगो लय छि फन क्वि रेतना हा मसिन ने चाखुंगी मुंग मनुंगी मकु मता मेन ब खंग नेतना करी हिन बे तोंगम निगे हा नंगी ननागी ननपी बचा म पाव ब साब ग दिसिनी
0: होयले अदु बुदि चुम मेबा
2: वाफम म नने हौजी काउन्सलर कुमार से मीन करकरा साउना ब मालेबा
0: हां
2: मागी भोत चीन के नाम है हम मैं खुश ते हिरा ठक पलाई देना
0: आ
2: यू करकर गौड़ा गांधी मुई वारी जे कुमार की वारी हटने बा आई ने तासी ने दे सार के तारी में
0: यू गौड़ा का गांग बवाबो मरनाई वा ओरी नी द अतई लाई री मोई तामो भोले पदी यू योन बदी

0: 나는 뭐저좀 닫아드리더라.
1: 아싸, 나무 따라젠 두순이다.
0: 응.
1: 팍벅하라 할로 나사가 팠더만에 하이브도 순해야 돼.
0: 어.
1: 시계슈 붙이다 니 타더러 뭐 하이브 니브는 나오라.
0: 응.
1: 넌 호로로이 뭐 따고 뭔가 시야욕도 헬도 시질래 이거.
0: 시비대함 소프 비니미.
1: 아니
0: 호이네, 무엇도 타더라, 그 시대디 봐봐.
1: 봐봐. 뭐 내가 이거 아니지. 뭐도 타더라 그 시디 파이드나.
0: 무엇 무슨 말이가지? 킷기 나띠에 와니. 아스, 빠무그레다. 파리세, 라인에 담범 레제라 마니세. 에, 미토억디에, 아, 코이기 나부해나. 파자비엘리, 파자드라!
1: 많이 맞아
0: 파자자네,
1: 미
0: 코이기네.
1: 톡도 다네 다뭐 모이네 암 빠칼지 아 코이나 까기 뭐 소이드레 칸마다네 모이기에 모이 롱기에 와커 신도 아이 우보다 마마이 신도 팍팍 레이 토가네 아 칸나 레오베완
0: 레이 토이 봐.
1: 레이 토이바
0: 뭐지? 우지 밖에 게 타이도 니게 데코 사이다. 아도 바래. 아 이중 하던 보타게 아잉 좀 답네 와래.
1: 다모
0: 나바니 주 와름니 나 하던 보타는 또 빨리
1: 오,
0: 빨리
1: 이다. 이번에도 마사몬 파르가 아주 보타르시다.
0: 예예 또.
1: 로시아시.
0: 아, 적토해. 적토,
1: 야바.
0: 뭐이 뭐 마신 티버 가도 하고 그렇잖아.
1: 어, 그래다모.
0: 아,
1: 내일이 보타르니.
0: 아스, 미혼지, 미혼지 야되네. 팡팡 쫑해네.
1: 다모, 미혼디 나나 왜 그것이 수원이네. 소이드나 까니, 소이드나 까니. 아이는네 강제벌레. 너랑 멍다 피란제 곡도 짭디나 우람메미.
0: 아, 시키는 브라디야.
1: 아시무니. 다모 아두가네 아티야 마탁시다 다모기 피란제 마닝 땀나 아예 뻔 아무것도 야우드나 에드 퍼퍼퍼 하이름 보이 와니제
0: 다모
1: 이런
0: 지다
1: मशीन थी बा ओई दबंगांग बा लेम नाम तो थारोय अस अस सिम कन्न होने लगा अभी हम बदल लोई ता
0: इस आई आई ए आई
1: दमो
0: ओके दमो
1: दमो
0: दम दम शाम के नु तो रिजो
1: दमो
0: ओए देमा ओए देमो इशिंग दो गीत को धोक पे रो इशिंग दो
2: हां
0: ए दमो
2: मुई दमो कई दौरे है बनो
0: ए इशिंग दो धोक पे रो
2: सिसी दले रे मुई
0: दमो
2: मुई तामो से मी
1: तामो तामो अब अगर कुकोक तक कुक तक इसिंग तो तामो कुक तक
2: मुई तामो से मी पांगो
0: सकी सकी
2: तामो
0: तारा ब्रा इनाउ जा नू नू नू लाऊं इसी तारा
1: ताय ताय भाई
0: अगर अगर ये मैं भाई और कुछ मेरे ये जुझोन में न पूरे हैं तो न कलक पीन पीने ला यू यू आई नो हेड इट आई है आई की न्याय पर करी ले हो रही है आई नो हेड आई नो हेड आई नो हेड आई नो हेड चुम्मे चुम्मे मैं आमने लाऊंगी बस आई दी मेरे अब यू योन पर है मेरे अब यू योन पर यू यो लग बोल ले पत्ता पर मैं आई काब चिंजागी यो लग बोल ले करी मियाम की मेरे पुए के निखल लो पपुंबा तायो नरब को इरल ले तुम पुंब जुलो इन माल न बताग ल आई की ये आई की दे आई मगर चीनी करी ले होरी के इनाव जा आई की दे आई मगर करी ले होरी के आई का चीनी वो खलतार आई न मियामु यू पितक पितक लगा पत्त बचिंजाक पीछे लगाई कि मील हुई कि नहीं आई न भूत का घर ये न खल हुआ मियाम की सिवा तो होगा नहीं न खल हुआ सब धोए
1: तो
0: धोमा मियाम ना कोई बुआ चो बराब तबीरे रे मैया काप ची जाग ले लो लगा ची जाओ पारे भूल लेप के निकल ली बले बाग बचा जा ना कोई सुई कुम ना वा बसे सोई दे तागा दी मियाम ना कोई दे की हेरे सिंह बदी को इसी दे इनाउ जा गजी दे गजी दे आई मियाम ने तोन बीबा आई की मिंग तोन जे हरो उन्हें लोग रखे मेरे भी यूँ बा मेरे भी यूँ बा मेरे भी यूँ बा
3: तभी रे यही फिर युम्बल की लीला मच्छा मेरे यूँ बा लीला ऐसी द सक्तम लांग की बसिंग दी श्याम की सक्तम दा रतन कुमार लेतान थे सखी की सक्तम दा माइबम बैतरनी चौथोई की सक्तम दा थोकचोम जोसेफ अमदी तोम्बा की सक्तम लांग की बा मोइरांग थे इबोपिसक लीला इबा चबुंग बम जाने सोरी देवी लीला पुथोकबा थोकचोम रेनुबला पुथोकबा तेंगबांगबा लांगोंजम सेत्याजे
4: याय फयुमबांदा युम्फ मोबाइल लीला मचा मिरेप युयोनबासि नसिगि थोरुंगी अरोय बयना सिलोपा तामिनारे
5: खै ताजरि बुङो
4: लीला आसिबु इबिरकबिना चबुंग बम जाने सोरी देवीनि लीला आसिबु पुथोकबिना थोकचोम रेनुबलानि पुथोकबा तेंगबांगमना लांगोंजम सेत्याजिनि
5: खै
4: अदुदि सेबेमा तोंगान तोंगानबा मखल मतिंगी थोरमसिंग असिसु तामिनारबनिना इसिलोपासु मतासोयदा हनना बतरसि
5: फनी फनी बुङो नसेसु योगजग्रगे
4: कुंगंगी थोरम ताबिरमलिबा ख्वाइ पुनमपु अमुकाना सिलोपाना गुरुमजरी

0: 어찌 은혜다고 내가 시복가리나. 이나오신 것이나 문행등록 들어가나 가리오이바. 야이마기 쎄나바기디 민호득이 러로드나 남나바칠레 어다보 라키스 어마디란 전기나 감도바.
1: 조바
0: 바바
1: 조바
0: 바바
1: 나나오기 어와다바 가리슐리트라바 나트로
0: 바바
1: 조바 능나 나나오싱 시부누시 나나오싱 시부 미유이 너 샘닝이 하이바 이파칸
0: 바바
1: 아두보 조바 능 설가르기 타북 아무도 보시나티 그럼 그다이 되기 셀나 능는 나오싱 시부 셈거 도리바노
0: 바바
1: 나나오싱기 칼링이 내용 빠한바기 마땀수 헬라카도레다나 칸드레 이파하기 비범 시나가 까리 하이가다바노 이빠 하이펌 강드레 고쪼바
0: 바바 마얀바 에기디 이나우싱아 시나 미 오드나 미나 베바토 바미 샤마 오헨바 헤베체 마얀바 에기디 랭드르와 니 바바 바바 에기 이나우싱아 시기 와클 한다가다바 와 암타타 한비라 카노 고 바바
1: 아두 보 쪼바 낭기슈 까리 똑시게 하이버도 칼루 하이버니 이빠 하이버
0: 바바
1: 아 이찔리 나우 하이버세 마유마케 이빠한딩아이더디 누시네바니 मयु मकई पानर मतम ददिने आइगे आइगे हाइब अमलाकनी मतम दुदा नंग निगम दो फौरकनी को चोबा
2: अचुम बने चोबा
0: इमा
2: नपान हाइरि सिंगसे ननाउ सिंगि सु मखोय गि मराय बक्ता इशोर न तंबा म लाखजरानी
0: इमा
2: खरीगी इसान पंवा सु वारु गदगे
0: इमा इनाउ सिंग असिना आइबो कचि इन थोपंग मोय दिमा मयाम बाइबो नाउ सिंग असिना याम न सिजबने aina ma khoibu ni amo oinaba semanga moidra haibage wani ma karigum ba semangam labadi nasa aigi di pokpoki ma hiya labani ne ima
1: o pore pore ichagi wa khalna dum yorabadi
0: ma
1: ipa kari shu haira
0: baba
1: adu bo cho ba
0: baba
1: ipa di yum musi da phamdok tu na lai thok padi
0: baba
1: ngam lagtra haing dagi di aishu aphanga khanga thabak chulagi
0: ko baba Baba, adumna karigi hari bunu baba. Adumna khanbu yadi baba. Haujikti na chai khoi chawre. Ima baba na karigi thabak shuru ga degene baba. Ima shu baba shu patha du na lerga dabni ne.
2: Adu da ne asau ba.
0: Ima
2: na nau singi changa dauri ba chenya mamani do.
0: Ima
2: nang na matau karam tauraga. Kada ai degi chhel na sin ga dauri ba no ne ibungo.
0: Ima.
3: Ima. A khoi ta moya sha kharbo.
0: Atom ba. नयामबा केस्ति कदा देले होरे
2: हुइने तुमबा नंगी तामुया इसकनि हाइबदुबु माबु खंद्र बजालो
3: इमा दामचा दो लाइब्रेरी द लाइरे अमनि द येंगलुगे थुना लाकनि अइबु सलमु हाइदुना थादुरो लिबने
0: ओ
3: अदो तामो अखोय तामुया गी लोरगा अइ कॉलेज के मिशन गी सेन पिनि हाइबदो पि दुरबा
0: अतोंबा नयामन पिनि हाइरे दिने अदम पिरा दबने आ नयाम जाय मगिसे हानम तलु सिंखिचिगो
2: अचौबा
0: इमा
2: ननाउ दुबु थेंग्रि ब्रो माबु सलम दाइसिदा कदाइदा मुक चटखरगे
0: इमा जायमदो ममा नबरो मेस्तु अमत उनुरुगे ने चटखिबने ए इमा हाइनरिङाइदा खय जायमदि हनभलगलिने इमा
2: यायमा नना सतोइसिबु थेंग्रि ब्रनै बुङो
4: चटबबुदि यारकलबने इमा दोइमा आइ चटपु चटिंग लगत्रेदा
0: करिनो यायमा चटकदबा नाक्तंगाय काचिदबो
1: ओइ नोय अदुमनु पुंगनिं हनथाबाय आबना टेको नोय
4: बाबा हौजिक अखोय इमुंगी ओरिबो फिबमसिदा आइगी पीएचडी मपुम फागनि थाजादि
0: जायमा नन अदुमनु खलिबो करिगिनो हा हाय हौजि हौजिकि नते दुक्सा दबगि वानिने नंबा नयामन ने नंगी दरका लेबो छिनफम खुनिम छोदन थारकनि हायरेदना
2: होइने जायमा नयामबनसु हायरिदा

ताबिरे रेडियो लीला खंथा हौदेदा आहन बतांक लीला सन्न बिखिबना कल्चरल बीच फोरम आकाशवाणी इम्फाल अगजी संदोक चरी नाहरोलगी खोंजल।

नवा खया राग बसंत आकाशवाणी फाल उसी संदोक्चरी ताबी निम्बई से खुदोल अदोम ने एस एम एस एम डी पोस्ट कार्ड के खुथांग खन भी रखी विषय सिंह आन वर्षी पोस्ट कार्ड इसे अहम को खान लखचगे लखचरीब आहान फिल्म से लोब तारे ताराजू फिल्म की सैनी पुष्परानी मंदाकिनी सकनीबनी बी के पांजी मयूम सैरें रणबीर थौना सैराब इसईनी चिठी इब मई क्वाकथेल लमदों सनाथोय सुरती कोनू पांथोय सूर्या।

बीन का जादू फिल्म से महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज में बीडी मिश्रा की कलम से निकले और एसएन त्रिपाठी के दिए संगीत से सजे इस गीत जैसा ही है ये साथ भी, जो चला आ रहा है जन्म जन्म और युगों युगों से। आपका और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल का, और मैं अभिनीत शुक्ला आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यार भरे गीतों का ये गुलदस्ता जिसे कहा जाता है हर श्रृंगार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अब आगे चलते हुए अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मिलन से लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की और इससे सुरबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी ने।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंगे हैं जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

मुनीम जी फिल्म से गीता दत्त और हेमंत कुमार ने तो अपने जज्बात कुछ अलग ही सुरीले अंदाज में जाहिर कर दिए, लेकिन अगर आपके दिल की बातें अनकही रह जाएं, तो उन्हें गीतों के माध्यम से बयां करने हम यहाँ हर सिंगार में आपके लिए चुन चुन के गानों को पेश करते हैं ना। वैसे इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था SD बर्मन का। साथियों, हम वापस लौटेंगे एक बेहद ही छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तो दोस्तों, कार्यक्रम हर सिंगार में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अमतुल हई वफा की कलम से निकली गजल की इस छलक के साथ। मोहब्बत का उनसे ना इकरार करना कि मोहब्बत का उनसे ना इकरार करना, बस आंखों ही आंखों में इजहार करना। तो इसी बात पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म से ये गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। गीतकार जन निसार अख्तर और संगीत है ओपी नैयर का।

सीआईडी के जैसे ही फिल्म पेइंग गेस्ट में भी देवानंद ने ही मुख्य भूमिका अदा की। गीत को अपनी आवाज दी आशा भोसले और किशोर कुमार ने, बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया एसडी बर्मन ने। और साथियों, इस गीत के साथ ही हरसिंगार की यात्रा में रुकने का समय भी अब आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध किया ये गीत।

और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब समय हो रहा है समाचार सुनने का, तो कार्यक्रम हर सिंगार को आज के लिए यहीं पर देते हैं विराम। आप सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। जल्द वापस लौटेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. Country's overall workforce participation rate WPR increases to 52.8% in August, highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,119 पर बंद हुआ. देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है. इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं. उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसलकर 23,119 पर स्थिर हुआ. बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया. शुरुआत में बाजार गैप अप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी. इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points or 1% to close at 74,004. Nifty shed 280 points of 1.2% to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Mid-Cap 100 index falling 2.1% and the Nifty Small-Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up but soon realized it erased their initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए. वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 26 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एज डाउनवर्ड. अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स कैपिटल गुड्स शेयर 4.2%, रियल्टी लॉस 3.9% एंड इंडस्ट्रियल्स ड्रॉप 3.6%. इन कॉन्ट्रास्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10-year ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर. ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
2: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
1: जी,
2: वो भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त. पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है. हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक कारण है. पहली बात तो है कि जो हमारी जो कच्चे तेल की दाम जो है
1: जी,
2: वो करीबन $108 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल आ गई है. ये कुछ महीने पहले ये 78 70 80 में मंडरा रही थी. अब उसके 80 से बढ़कर 108 में आना, और आप जानते हैं कि हमारी जो भारत की जो आयात के ऊपर, तेल का आयात के ऊपर जो निर्भरशीलता है वो करीबन 80-85% के ऊपर है. तो उससे हमारी जो देश की जो फाइनेंसेस जो हैं, कंपनियों की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है. इसीलिए एक तो स्टॉक मार्केट में उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये. और दूसरी बात, आपने जो कहा कि जो वैश्विक बाजार में पर्टिकुलरली जो अमेरिकन बाजार में जो यील्ड की जो जो जो जो 5% तक आ गई है उसका ये एक दिन का ये आकलन नहीं है, ये बहुत सालों से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड मतलब जो बॉन्ड के जो दाम जो हैं वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो एफआईआई जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है, वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो उनकी जो रिटर्न्स जो है वो अचानक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही है। और तीसरा बात जो है मैं अभी कहता हूँ कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे वो सीपीआई का नंबर अभी कल परसों आया था उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है, उसकी यही दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है, तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है, तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर अक्टूबर में जो जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे वो भी है, और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो आउटलुक जो है उसमें एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसी को दर्शा रहा है आज का स्टॉक मार्केट।
0: AKB, you mentioned about how important the interest rates are because of how the RBI will possibly react in its MPC meeting on October 7. If the repo rate goes up, clearly that would also mean that lending rates would go up and the valuation of banking stocks is also affected. Today, the big hit in the domestic stock market, since we've already spoken about global uncertainty and how inflation is being linked to costs and business performance, Bank Nifty took a hit. It went down by 812 points. Is that likely to continue? Because banking performance has been very good as far as their corporates are concerned. Their net interest margins have improved. NPAs have come down. Why is it that banks took a hit today?
2: Well, let me first clarify a couple of points that you raised. When the first point that you mentioned was about what was your first point? The first point,
0: sir, I asked you about Bank Nifty, which took a hit today, and RBI's monetary policy meeting will take place, where there is the
2: Reserve Bank
0: assumption
2: of,
0: that the you know it'll go up by 25 basis
2: no,
0: points.
2: No, the Reserve Bank of India's problem is that the liquidity in the economy is very very high because of $100 billion of inflows coming in. So if the government and the RBI have to tame the inflation, it has to control the liquidity. Now, to control the liquidity, it must raise interest rates. So, therefore, inflation is an outcome of that. So, the RBI will probably be forced to review its interest rate stance also to manage the liquidity. As far as the Bank Nifty is concerned, Bank Nifty is today the there is a view that the bank's margins will come under pressure. Now they will come under pressure for the simple reason is the cost of raising money and the returns that you get by lending money, that margin is getting squeezed. So if you look at the short-term outlook, the banks are probably fearing that their income will come under attack. But if you look at some specific banks have done well even on a day when their bank Nifty hasn't performed very well.
0: NBFCs fell today along with your commercial banking.
2: That's because of the margin issue, because there is a margin pressure right now.
0: Information technology, on the flip side, actually went up. Is it because of the US dollar index improving? It's inching closer to 100.
2: Well, the IT stocks have done well also because the IT sector will quite surprisingly will see a better outlook when there are question marks over AI, because the Indian IT is not that right now committed to AI, and if AI gets a setback, then the Indian IT sector probably sees a better outlook. That's number one. And number two is that some of the IT companies have benefited because of what has happened to the Tata Sons listing decision. If the Tata Sons listing decision goes through, then one of the biggest beneficiaries will be India's largest IT company, which is TCS, which has got a shareholding, will be have a shareholding of a decent size in Tata Sons. So that is also a factor. But otherwise, the IT sectors, the initial the problems and the tribulations are getting over, and even the job situation is getting better as far as the IT sector is concerned.
1: Bhattacharya ji, aapne jitne pehluon ki baat ki un sab ko nazar mein rakhte hue, agar hum ye sochein ki aane wala samay ki, kyunki ये तो मन में आता ही है कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट किस तरीके से रुख बदलेगी या अभी हम कैसी स्थिति पर हैं उसे हम सही आंक पाएं, ऐसे में क्या ये कहना उचित होगा कि दुनिया की जो आर्थिक जो व्यवस्था है वो एक नए दौर की तरफ बढ़ने को है या फिर ये बस कुछ क्षणिक कुछ दिनों की बात है?
2: नहीं, देखिए, जो आर्थिक दौर की जो आप बात कर रहे हैं वो काफी दिन से ये आर्थिक दौर चल रही है और ये आज ही नहीं बदलेगी। तो अगर आप आर्थिक दौर की बात कर रहे हैं, इसका जो जो डायरेक्शन जो है वो कई साल पहले ही बदल चुका था, जहाँ पे सरकारें ज़्यादा खर्च कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्च नहीं कर रही हैं, और उससे जो ये तालमेल जो था सरकार और बेसरकार की जो तालमेल जो थी वो थोड़ी बहुत इम्पैक्टेड हुई है। और इसीलिए एक तरफ आप बॉन्ड मार्केट के यील्ड बढ़ते हुए देखते हैं, दूसरी तरफ सरकारों की जो डेफिसिट जो है या बोरोइंग जिसे कहेंगे आप, वो बढ़ती जा रही है। तो और उसी तालमेल की नहीं रहने से स्टॉक मार्केट में भी उसका एक असर पड़ा है, और वे असर मैं समझता हूं कि जल्दी जाने वाला नहीं है।
0: In more news, the government has announced that banks cannot impose any charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The clarification also covers payments of up to 2,000 rupees made through RuPay-powered debit cards.
3: According to the gazette notification issued by the Finance Ministry, no bank or system provider can impose any direct or indirect charge on a person making or receiving payments through RuPay-powered debit cards and UPI. The notification specifically categorized RuPay-powered debit cards and UPI transactions of up to 2,000 rupees as electronic modes of payment. The Ministry has notified the changes under the Payment and Settlement System Act to clarify the rules regarding charges on UPI transactions. The Finance Ministry also said that all person-to-person P2P UPI transactions will continue to remain free and there will be no blanket MDR on merchants. It further said that such charges would be significantly lower

आशा भोसले की आवाज में अजीज कश्मीरी के शब्दों और ओपी नैयर के संगीत में पिरोया हुआ ये गीत था फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। वैसे गीत मेरे मनमीत वाली रात तो फिर से आ चुकी है मेरे यानी कि अभिनीत के साथ। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिवाली की रात से तलत महमूद का गाया हुआ, जिसे लिखा नक्श लालपुरी ने और संगीतकार हैं स्नेहल भटकर।

1977 में आई फिल्म जोशीला से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारा भी अपने घर का रास्ता देखने का अब वक्त हो चुका है। तो आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अभिनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आगे आप सुनेंगे समाचार और हमेशा की तरह सुनते रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अपना रखिए अच्छे से ध्यान। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तौफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में अ सेंचुरी ऑफ सर्विस द RSS इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलीसाई सौंदर्यराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात करेंगे सपनों की। सपने जो हम अक्सर देखते हैं, कभी खुली आंखों से, कभी बंद आंखों से। ख्वाब प्यारे लगते हैं, जब हकीकत से मिलते हैं तो थोड़े भारी लगते हैं। खैर, ख्वाबों के बारे में, सपनों के बारे में बहुत से शेर शायरी, बहुत सी बातें कही गई हैं। आज हम भी उन्हीं में से कुछ बातों को आपस में साझा करेंगे।

ये सपना वही है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सपने हम सब देखते हैं और भर भर के देखते हैं। खुली आंखों से तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। वैसे भाई सपने अगर माना जाए तो दो तरह के होते हैं। वही जो मैं कह रही थी कि एक वो जो हम सोते समय आंखों से अचेतन मन में देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम खुली आंखों से अपने भविष्य को संवारने के लिए देखते हैं। और दोनों ही तरह के सपने हम सबके जीवन, उसकी मानसिकता और कहीं ना कहीं वो हमें प्रेरित भी करते हैं। सोते समय आने वाले सपने हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक और कह लें कि जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो हम जागते हुए देखते हैं वो हमारी सोच के कारण हम उन सपनों को देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं।

बात आज निशिगंधा में हम कर रहे हैं सपनों की. सपने कई बार बहुत अजीब सपने आते हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें सपनों में आती हैं जिनके बारे में हम दिन में क्या कभी बात ही नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं. ऐसी जगह हमें सपनों में दिख जाती है और कई बार हमें लगता है हम इसी घर में थे, यहीं थे, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है. ये भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जानने वाले से बात कर रहे थे सपनों में, लेकिन वो जानने वाला उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी वो हकीकत में नज़र आता है. तो सपनों की दुनिया भी बहुत अजीब है. कई बार इन्हीं सपनों में हम उन बिछड़े हुए लोगों को भी देख लेते हैं जिनसे बिछड़े ज़माना हो गया है.

तो बहुत सारे चेहरे हमें सपनों में भी मिल जाते हैं, जिन्हें हम हकीकत की जिंदगी में ढूंढते रह जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है ना, वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, और ये सपने ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए सपनों का होना भी बेहद जरूरी है। सपनों के बिना हमारा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। जब कोई सपना होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, वैज्ञानिक बनना है या सिंगर बनना है, तो उसका भी तो वो सपना देखता है ना, और वही सपना उसे प्रेरित करता है जल्दी उठने के लिए, रियाज करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए। और जब वो ये सारी मेहनतों से गुजरता है तो वो निखर जाता है और वो बनता है जो वो बनना चाहता था। तो ऐसे ही खूबसूरत सपने सजाते रहिए और जीवन को आगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। रात्रि के 12:37 और हो गए हैं पूरे 27 सेकेंड। आप हैं माधुरी के साथ निशिगंधा के इस सफर में, और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की। जी हाँ, ख्वाब तो हम सभी देखते हैं और तरह तरह के देखते हैं। कभी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के भी ख्वाब देखते हैं कि उनके बारे में सुना है कि धरती पे ऐसी जगह जन्नत है। जी हाँ, आप समझ गए ना, मैं कश्मीर

कश्मीर की बात कर रही हूँ, मेरा भी ये ख्वाब है कि कभी मैं कश्मीर जाऊँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर होकर आए होंगे, लेकिन हाँ, मेरा ख्वाब अभी ख्वाब है।

भाई कश्मीर का सपना तो है, चलिए कभी अगर यूं ना जा सके तो सपने में ही कश्मीर चले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, और हम बात कर रहे हैं आज निशिगंधा में सपनों के, सपने उड़ान भरते हुए सपने, बहुत प्यारे खूबसूरत सपने। लेकिन कई बार जिंदगी की हकीकत हमें डराती भी है, हमारे सपने टूटते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के ख्वाब हम देखते हैं और कई बार अच्छे अच्छे ख्वाब भी टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। और जब ख्वाब टूटते हैं ना, तो सिर्फ ख्वाब ही नहीं टूटते, हम भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जिंदगी है दोस्त, इस बिखराव को भी हमें समेटना होता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जी हाँ, इसी तरह के हौसले के साथ हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और हाँ, ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे ख्वाब हमें रुला के ही क्यों ना जाएं।

सपने टूटते हैं, हम ना उम्मीद होते हैं और सपने हमें इसी तरह रुलाते हैं। लेकिन सपने हमें जीवन की राह भी दिखाते हैं, सपने हमें रोमांटिक भी बनाते हैं। और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना, उसके बिना सपनों की ये महफिल कैसे कंप्लीट हो सकती है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल

की बात करें, वो गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी ही, उससे पहले कुछ और भी कहूंगी। और ये देखिए चंदलाइने हैं, बड़ी प्यारी हैं, आप तक पहुंचा रही हूं कि काश कोई हम पर भी इतना प्यार जताती, पीछे से आकर वो हमारी आंखों को छुपाती, सीने से लगाती मुंह बनाती, पर बेगानी राहों पर इस तरह छोड़ कर न जाती। काश कोई हम पर भी, कोई हमारी भी नींदों में आती, ख्वाबों में आती, मुझे चिढ़ाती और लड़के मनाती, दर्द को वो मेरे कम कर जाती। काश कोई हमारे भी ख्वाबों में आती। तो चलिए, इन सब पंक्तियों के बाद अब वो प्यारा गीत, जो ड्रीम्स की बातें हो रही हैं तो ड्रीम गर्ल को तो आना ही पड़ेगा।

तो भाई सपने तो ऐसे ही होते हैं, आंखों में आते हैं, समाते हैं, चले जाते हैं। कई लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बस अपनी रात भी गंवा बैठते हैं। और बहुत सारे हमारे अभी भी साथी जो हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग रहे हों। तो चलिए, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, लेकिन निशे गंधा का ये सफ़र यहीं हम समाप्त करेंगे इस गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। औषधि विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों के सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अंडमान, निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Sandhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry yesterday said that the payments to the merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers. Indian parliamentary delegation is participating in the 69th Commonwealth Parliamentary Conference, CPC, being held in Cape Town, South Africa, till the 19th of this month. The delegation is being led by Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh. The conference is also being attended by 32 presiding officers and 18 secretaries from state and union territories legislatures of India who are members of the Commonwealth Parliamentary Association. Rajya Sabha Secretariat informed that Mr. Harivansh arrived in Cape Town yesterday and held bilateral meetings with Speaker of the National Assembly Angela Thuthuzile Didiza, Deputy Chairperson of the National Council of Provinces of South Africa, Pubulan Govinder, and Deputy Speaker of National Assembly, Anhele Lotreed. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav has participated in a stakeholder workshop on strengthening health professional education for cardiometabolic diseases, CMD. The workshop was organized by All India Institute of Medical Sciences, Delhi, under the Partnership for Education of Health Professionals program. In a social media post, the Ministry of Health said such collaborative platforms are important to align education and training with emerging health needs and strengthen the preparedness of health professionals to address India's growing burden of NCDs. Ministry of Statistics and Program Implementation has said that the overall labor force participation rate, LFPR, for persons aged 15 years and above has increased to 55.6% in August this year, which was 55.4% in July this year. According to the monthly bulletin for August this year of the Periodic Labor Force Survey of the Ministry, a similar trend has also been observed in rural areas, where the LFPR for persons aged 15 years and above increased to 58.2% in August 2026. It was 58% in July this year. Vice President C.P. Radhakrishnan today released a book titled A Century of Service, the RSS in 100 Acts of Seva, at a function in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत सुहाने लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे पुराने गाने, ओल्ड क्लासिक्स। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम चिपक के बैठ जाइए और इन प्यारे प्यारे गीतों को हम पहुंचाएंगे आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। और ये जो गीत है ये हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म सूरज से।

ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म सूरत से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा।

जी हाँ, ये हवा ये नदी का किनारा, इतना प्यारा सा गीत हम लेकर आए थे आपके लिए फिल्म घर संसार से, आशा जी और मन्ना डे के आवाज में, संगीत रवि साहब का।

ये दर्द भरा गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब से। लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में और संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म पालकी से।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब भी सुनते हैं एकदम वैसे ही दिल को छूता है जैसे लगता है आज ही पहली बार सुना है। फिल्म गहरा दाग से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, संगीत रवि साहब का और बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

फिल्म जिंदगी से ये गीत सुना आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा था ये गीत और बोल लिखे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने। अब अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म जिंदगी और ख्वाब से।

तो ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म थी हमराही। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफ़र है गीत सुहाने का। अगला सुहाना सा गीत है फिल्म संगम से आप सभी के लिए।

प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। खूबसूरत गीत फिल्म संगम से सुना आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत, बोल लिखे शैलेंद्र ने। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म तलाश से। गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, ओल्ड मेलोडीज। तो गीत सुहाने से ये आखिरी जो नगमा है आज की।

और इसी के साथ गीत सुहाने की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों और लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत में हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये वक्त है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। तो रात सुरमई को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू करते हैं ये गीत, और ये गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म कर्ज से।

बजे की उम्रें हम पूछा करते थे और वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो जो पल है ना, कहीं वक्त की शाख पर ही अटके रह जाते हैं। सच में ये जो उम्र होती है ना जवानी की, 16, 17, 18 साल, वाह क्या बात होती है, बेफिक्री की उम्र होती है। और हर उम्र में ख्याल आता है इस उम्र का। तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ सबकी दुआओं के साथ साथ। वक्त सबका आता है, मन छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि देर सवेर हो जाती है, और बातों ही बातों में ये बात भी कि तिनका तिनका कांटे तोड़े सारी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की।

में अक्सर दिल बड़ा मचलता है, बहुत कुछ कहना होता है पर कहने से डरता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। जी हाँ, पहले प्यार की बात ही अलग होती है और बातों में भी क्या क्या अलग होता है, ये बताने वाला है हमारा अगला गीत।

पहले पहले प्यार की बहुत सारी बातें हैं जो गाहे बगाहे याद आ जाती हैं, और सच तो ये भी है कि सबके नसीब में ये पहला प्यार थोड़े ही होता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं दिल की चोरी तक। जी हाँ, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया, दहर में मैं खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया, और दिल ही नहीं है मंजिले सीना में अब, यहां से वो बेचारा सफर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। और ये पंक्तियां लिखी मीर तकी मीर साहब ने, और आप तक पहुंचाई हैं इस नाचीज ने, और अगला गीत भी आप तक पहुंचा रही हूं।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है रात सुरमई का और रात्रि के 2:32 और हो चुके हैं पूरे 48 सेकंड।

रात सुरमई के इस सफर में आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत, और उम्मीद करती हूँ कि रात के इस सफर में आपके अच्छे हम सफर साबित होंगे ये गीत। वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।

लफ्ज बिखर जाएंगे होठों से तबस्सुम की तरह, एहसास की बातें हैं ये, दिल थाम के सुनिए।

आगे चलें या पीछे चलें और चलते रहें, लेकिन रात सुरमई का ये सफ़र अब कह रहा है कि यहीं इसको विराम दिया जाए। तो आखिरी गीत आपकी नज़र करते हुए, गुरेज पा है नया रास्ता किधर जाएं, चलो कि लौट के हम अपने अपने घर जाएं। इसी के साथ दीजिए विदा माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित होगा। 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। भारत और अमरीका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 160 रन बनाए। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthi was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians, and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry yesterday said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said, consequently, about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts have also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. The Department of Pharmaceuticals organized Swachhta Pakhwada from 1st to 15th of this month, realizing Prime Minister Narendra Modi's call for Swachh Bharat, Swasth Bharat, of maintaining cleanliness around. Ministry of Chemicals and Fertilizers said, with active participation of all seven National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, NIPERS, public sector units and departments, the cleanliness drive was undertaken by faculty members, officers and employees. A joint military exercise, Yudh Abhyas, involving the troops of Indian and US armies, which seeks to bolster interoperability among the two forces and address emerging challenges while further strengthening the bilateral defense partnership, kicked off yesterday. The opening ceremony of the 22nd edition of the exercise was held at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand. The exercise is simultaneously being conducted at Auli and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan, the Defense Ministry said. Meghalaya Cabinet has approved amendments to the Meghalaya Film Tourism Policy 2025. The aim was to bring greater clarity and strengthen the policy's effectiveness in promoting Meghalaya as a destination for film production. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi to take a 2-0 lead in the 3-match series. Put into bat first, Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India easily overhauled the target in 14.5 overs. Nitish Kumar Reddy was declared player of the match. The third match of the series will be played at the same venue tomorrow. And with that, we end this news bulletin.

जानते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई दूर है तो उससे हम प्यार नहीं करते। कई बार इंसान बहुत दूर होता है लेकिन उसकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। फासले सिर्फ कदमों के होते हैं, दिल के नहीं। सच्चा प्यार तो वो है जिसमें सामने न होकर भी कोई दिल के बहुत करीब महसूस हो, उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आए और उसकी याद अकेलेपन को भी खूबसूरत बना दे। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी की आवाज का इंतजार। दूर बैठे इंसान को बस इतना भरोसा है कि वो मुझे याद कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा। मोहब्बत में इंतजार अच्छा लगता है, लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो जाए ना, तो दिल की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। फिर मन करता है कि बस एक आवाज आए और कोई हमें पुकार ले।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, मोहब्बत में इंतजार शायद सबसे खूबसूरत एहसासों में एक है। जब किसी खास इंसान के लौटने की उम्मीद दिल में होती है ना, तो वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, दिल उसका इंतजार करना नहीं छोड़ता। कभी कभी सामने वाला पास नहीं होता, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि सच्चे प्यार में दूरी हो सकती है लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।

0: दोस्तों, कभी कभी प्यार में सबसे प्यारी शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमसे बातें तो करता है लेकिन दिल की बात नहीं कहता। उसकी बातों में अपनापन भी महसूस होता है और कभी कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ हमारी उम्मीद है। मोहब्बत में यही तो उलझन है। कभी उसकी एक छोटी सी बात दिल को यकीन दिला देती है कि प्यार सच्चा है और यही खामोशी मन में सवाल खड़े कर देती है कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या यूं ही बातें करता रहता है। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक नगमा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कभी कभी मौसम भी दिल की बात कहने लगता है बादलों का यूं घिरना हवा का कुछ गुनगुनाना और किसी की याद का अचानक दिल में उतर आना शायद मोहब्बत का असर कुछ ऐसा ही होता है जब दिल किसी के ख्यालों में खो जाए तो बादल भी दीवाने लगते हैं और हवाएं भी कोई प्रेम संदेश लेकर आती हुई महसूस होती है यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है साधारण से मौसम को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल देना तो चलिए सुनते हैं ये गीत

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान में खतरा है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में बदलावों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने प्रोत्साहन को अधिक लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज हवा और मूसलाधार बारिश की संभावना है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns." The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said, "The issue of the Houthis were also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned." Mr. Jaiswal said, "New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region." On the attack on commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, "Targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India." In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized India's strong commitment to multipolarity, rooted in its independent stance and commitment to strategic autonomy. Delivering the valedictory address at the Silver Jubilee celebration of the Indian Council of World Affairs in Delhi, Dr. Jaishankar expressed confidence that India is destined to rise in a turbulent world.
4: "When India advocates dialogue and diplomacy, when we stress that endless war must give way to an end to war, this is our particular way of thinking. Indian diplomacy will always have peace and development as its central agenda, not just as an idealistic goal, but as a sensible prescription for the world order to advance progress and prosperity."
3: The Finance Ministry has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The National Payments Corporation of India, NPCI, announced that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced for select merchant transactions, effective from the 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. Chief ministers of six states have signed the Kisau Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said, "The central government has declared the Kisau project a national project." Mr. Shah added that the central government will bear about 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. This decision has been taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. There are 6,725 ASHA workers currently working in Delhi. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi to take a 2-0 lead in the 3-match series. Put into bat first, Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. And with that, we end this news bulletin.

अरुणिमा कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है भक्ति में प्रस्तुति की और आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों जब मन बहुत थक जाता है ना तब दुनिया की भागदौड़ के बीच कहीं सुकून नहीं मिलता, तब इंसान अपने आराध्य की शरण में चला जाता है। वहां न कोई शिकायत रह जाती है ना कोई सवाल, बस मन में एक विश्वास होता है कि मेरे कान्हा सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं।

दोस्तों, जब जिंदगी में सुख के पल आते हैं ना, तो हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं रहती। खुशियां बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना, तब मन भीतर से टूटने लगता है। तब अक्सर वही भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है। शायद इसलिए जिंदगी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में होती है। जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ आपका हाथ थामकर खड़ा रहता है ना, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। और जब इंसान को लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, तब ऊपर वाले पर विश्वास उसे संभालता है। आखिर सुख और दुख दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, और हमें बस हर परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी की राह में हर मोड़ पर कोई हमारे साथ चले ये जरूरी तो नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। भीड़ साथ हो तो सफर आसान लगता है, लेकिन अकेले चलना ही हमें अपने भीतर की ताकत से मिलवाता है। कभी पीछे मुड़कर देखिए ना, जो लोग रास्ते में मिले, कुछ पल साथ चले और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। शायद यही जिंदगी है, मिलना, बिछड़ना और फिर अकेले चलते रहना।

कहते हैं कि प्रेम जब सच्चा होना तो उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। और कृष्ण की बंसी की धुन में तो जैसे सदियों से उसी प्रेम की पुकार बसी है। बंसी बजती है तो राधा का नाम याद आता है, और राधा का नाम आते ही मन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही तो सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का नाम है, जहां दूरी भी रिश्ते को कम नहीं करती बल्कि प्रेम को और गहरा कर देती है।

सच यानी सत्यम, कल्याण यानी शिवम और सुंदरता यानी सुंदरम। इन तीन शब्दों में जैसे जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती तो उस सोच में होती है जो किसी के जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन भर दे। कभी कभी हम बाहरी सुंदरता को देखकर ठहर जाते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता मन की होती है, भावनाओं की होती है और उस सच्चाई की होती है जो किसी रिश्ते को उम्र भर खूबसूरत बनाए रखती है।

धन दौलत और सुख सुविधाएं इंसान को कुछ समय के लिए खुशियां दे सकती हैं, लेकिन मन का सुकून तो तभी मिलता है जब दिल में प्रभु का नाम बस जाए। मीरा ने भी तो यही कहा था कि उन्हें संसार की दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने श्याम का प्रेम ही सबसे

भी बड़ा धन लगता है कि कितनी खूबसूरत बात है ना, जब मन में भक्ति का दीप जलता है तो छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल लगने लगती है। प्रभु का नाम ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय इसे कम कर सकता है।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेनदेन निशुल्क रहेगा। इस तरह लोगों से व्यापारियों को लगभग 96% लेनदेन प्रभावित नहीं होगा। 2000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर 0.4% का मामूली एमडीआर लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की सीमा 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली की में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये सम्मेलन 19 सितम्बर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिल सिलाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत अमरीका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने प्रोत्साहन को ज्यादा लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जनभागीदारी अभियान का गीत जारी किया है। इस गीत को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीत में आवाज देता है। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said the issue of the Houthis were also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts had also been issued and lifted in six cities including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with the authorities saying the danger had passed. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized India's strong commitment to multipolarity, rooted in its independent stance and commitment to strategic autonomy, delivering the valedictory address at the Silver Jubilee celebration of the Indian Council of World Affairs in Delhi. Dr. Jaishankar expressed confidence that India is destined to rise in a turbulent world.
3: When India advocates dialogue and diplomacy, when we stress that endless war must give way to an end to war, this is our particular way of thinking. Indian diplomacy will always have peace and development as its central agenda, not just as an idealistic goal, but as a sensible prescription for the world order to advance progress and prosperity.
2: The Finance Ministry has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of amount transferred. The Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. National Payments Corporation of India, NPCI, has announced that a revised UPI merchant discount rate framework will come into effect from 15th of next month. Chief ministers of six states have signed the Kishau Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said the central government has declared the Kishau project a national project. Mr. Shah added that the central government will bear about 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. There are 6,725 ASHA workers currently working in Delhi. Meanwhile, Delhi government has also decided to build hostels for 10,000 students studying in colleges and universities across the national capital. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Sub-Himalayan, West Bengal, Kerala and Mahe today. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls. And with that, we end this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 7 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हरियाली हो, खुला आसमान हो और सामने से जाता हुआ कोई रास्ता, बस मन करता है चलते ही जाए। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना, रास्ते पहले से तय नहीं होते, लेकिन चलते रहने से मंजिल जरूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की।

फूल का काम है खिलना और इंसान का काम है मुस्कुराना। हालात जैसे भी हो, अपने अंदर की खुशी को मुरझाने मत दीजिए, क्योंकि एक मुस्कान कभी कभी पूरे दिन का रंग बदल देती है। तो चलिए सुनते हैं ये मुस्कुराता हुआ गीत।

दोस्तों, कुछ बातें कागज पर लिखी जाती हैं और कुछ दिल में, और जब दिल की बात फूलों के रंगों से लिखी जाए ना, तो उसका जवाब भी शायद एक मुस्कान ही होता है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड पर कार्यक्रम भोर सुहानी।

दोस्तों, पहाड़ों की अपनी ही एक भाषा होती है। खामोश रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं, और पहाड़ हमें एक और बात सिखाते हैं, ऊंचाई चाहिए तो चढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए।